सुखमंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सुरैणारे मन गुरमिल काज सवारे रहा एव संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाई पिया वे इहु रस अकत कदा दिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहज।

पर असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रहह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूर मोह पख सार असंख्य मोन लिव लाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुर माए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान

आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सा लाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपाओ जाने अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा। असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया। आपे जाने आप सालाहे एते सुरत ना पाईया। नदिया अतै वाह पवह समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान। गिरहा सेती माल तन कीड़ी तोलना होवनी जे तिस मन होना विसर है। अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए। बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप

अनात्माय केते मंगह जोद अपार केतया गणत नहीं विचार केते खाप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाहि खाहे केतया दुख भूख साद मार एहे पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जेसनो बक्से सिफत सालाह नानक पाते साही पाते साहु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लेव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है पढ़े करह वख्यान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सोर नार मुन जान सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेहे ता आख ना सकहै केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै भूल वेगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे गावहि तुहनो पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावहि चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावहि ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावहि इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दोय कार चलावह लिख आवह भाग आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्हा नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जीबा लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरे कर्म पवै नीसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काढ़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरते सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबाल सूर तिन मह राम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसहै के लोह करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लोह लोह आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुहदाई दाया खिलै सगल जगत
चंगे आइया बुरे आइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपने के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह है जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्य नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोबनमे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रिहिमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले

एक है, अनाम है, अकाम है, अति है, अपी है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अबरण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ते बेपूते कलंकं बिना ने कलंके स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे
अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख करमं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव

ਸਹਿ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਬੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬੇਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ
के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीम उल कमाल है के हुसन उल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरीफ उल सिकन है हिरास उल फिकन है कलंकं परनास है समस्त उल निवास है अगंजुल गनीम है रिजायक रहीम है समस्त उल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सरबुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनांग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्व प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाह एकै सदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खाल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर परनाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्बं पर है सर्बं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर हैं बेस्वंग पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खाल खंडस हैं पारते पार हैं करुणाकार हैं अजपा जाप हैं अथपा थाप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणाकृत हैं अकृता कृत हैं धरणी त्रित हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नर नायक हैं खल कायक हैं बेस्वंग पर हैं करुणालय हैं नृप नायक हैं सर्ब पायक हैं भव भंजन हैं अर गंजन हैं रिप तापन हैं जप जापन हैं अकलंग कृत हैं सर्वा कृत हैं कर्ता कार हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्व आत्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं पुजंग पर्यात चंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेपूते
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्तर चक्करवर्ती चत्तर चक्कर भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें त्वय प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख प्रियो कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत पिरै सब देस दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत तार सब ऐसो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के परस हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे
कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिये सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन कौ आज संघरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा
अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरे सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहु उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्तर है सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहै मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक ना जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कहै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहै नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहै नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा
साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहु संतहु, शब्द धरहु प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे। कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो, क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। ए सुनाओ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो, क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा, तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई, जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो। होर क्या कर है वेचारिया, एक भरम भूले फिर है दह दिस। एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल। जिना भाणा पावै, कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै। आवहो संत प्यारे हो, अकथ की कर है कहानी। कर है कहानी अकथ केरी, कित द्वारै पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर कौ, हुकम मन्यै पाईऐ। हुकम मन्यहु गुरु केरा, गावहु सच्ची बाणी। कह नानक सुनहु संतहु, कथेहु अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई, किनै ना पाया चतुराई ना पाया। किनै तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती, जिन ठगौली पाईया। कुरबान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई, किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरा चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाइऐ। ऐसा काम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताइऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरा नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा। तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया, किनै तेरा अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान ए। आख है ता वेख है सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता। केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिसना। बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हो निकी। एत मार्ग जाना गुर प्रसादी, जिनी आप तजिया।
हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिव चलहै जिन्ना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव हे। कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहेला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहेला सत गुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया जिन धुर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक सबद सोहेला सत गुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो। पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित। से पवित जिनी मन वसाया कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै वेन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लागहो हर स्यो रहो चित लाए। कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा एव जाए। जिया हो मैले बहरहो निर्मल बहरहो निर्मल जिया हो ता मैले तिनी जन्म जुवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनहो वेसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कहै नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जियाहु निर्मल बहरहु निर्मल बहरहु ता निर्मल जियाहु निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ के सोए पहुचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कहै नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदै त्याए। अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परणै। गुर बिन अवर न जाने कोए। कहै नानक सुनहु संतहु सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई पुछहु बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहै नानक विचार देखहु बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवहु सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहु सच्ची बाणी बाणी ता गावहु गुरु केरी। बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। पीवहु अमृत सदा रहहु हर रंग जपिहो सारिग पाणी। कहै नानक सदा गावहु एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहै नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ।
आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसया। बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै। जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यो मनहु विसारिय। मनहु क्यो विसारिय एवड दाता जे अगन मह आहार पहुचावे। ओस नो केहो पोहे ना सकी जिस नौ अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समालिया। कहे नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौ पिया विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपिहो जियहो लाहा खटिहो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए हूरत कितै जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर

अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारै जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचा घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचा। जिथै सदा सच त्याव हे, सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव हे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्से सो जन पाव हे। कह नानक सच सोहेला, सचै घर गाव हे। अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार, ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वेसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आ गया।

एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासाय हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी। पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल किराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासां नाल निबाही। तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका। सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह है। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका। अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांच बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन। बाणी पढ़दियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा। दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी। सब नू अपने दरों करो नाम दी दात। गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके करतार्थ करना। संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के घरां विच सुख शांति वरतौनी। आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी। किरत कमाईयां विच बरकतां पौनियां। कारोबारां विच वादे बख्शिश करने। शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदिया होया इसे तरह अपने दर घर दे नाल आप जी ने जोड़ी रखना। आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजर है। आप जी दे दर प्रवान होवे।
ਦਰ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ

गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायना

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जीओ। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच वी ध्यान रखना जीओ। नाव चक्कर ते सुन सकदे हो, हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कना है उथे सुन सकदे हो, कंठ चक्कर जिथे गले चों आवाज आउंदी है उथे सुन सकदे हो। जिथे भी आप जी नूं सिमरन नाम ध्यान दे नाल सुनदा उथे आप जी ने सुन दी कोशिश करनी जीओ। जिन्हां प्राणियां नूं नाम नहीं सुनदा उन्हां ने स्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, स्वास बाहर नहीं आता गुरु फील करना। स्वासा दे नाल सास ग्रास सिमरन करी जाना जीओ। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ, दो तीन मिनट मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ।

जिन किया तिस चीत रख नानक निवहि नाल। ये दो पंक्तियां दा श्लोक है। जो बचन महाराज ने ना श्लोक वालियां पंक्तियां दे विच कीते ने सारी अष्टपदी बाकी दे अठई बंद इस श्लोक दी पूर्ण व्याख्या है। जो श्लोक दे विच महाराज ने कंसैप्ट लिया है और उस कंसैप्ट नूं पूरी तरह एक्सप्लेन किया है पूरी अष्टपदी दे अंदर, अठ बंद ने अष्टपदी दे। आपां यतन करांगे एक दो बंद वाचांगे ताकि श्लोक साडी पकड़ विच आ जाए। महाराज वचन करदे ने निर्गुणी आर, इत्थे थोड़ा जिहा विश्राम देना है, अर्ध विश्राम। निर्गुणी आर दा अर्थ हुंदा है जिहड़ा गुणा तो रहित होवे, जिहदे विच कोई गुण ना होवे। निर्गुण

बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नाव खंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी, गुण निदान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी, सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी, गुण निदान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी।

बिखिया अमृत बन देखे अब गाह जी, आत्मा अचेत पंछी धावत चतुर कुंट, जैसे बिरख बैठे चाखे फल तहा जी। आत्मा अचेत पंछी धावत चतुर कुंट,

मन विचै सतगुरु के पात ते सेवक के कार्य रास आप संगतन गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा रहे सन। भाई तरलोक सिंह जी पौंटा साहब वाले का रागी जत्था तिना का संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण भाई गुरदयाल सिंह जी श्री खडूर साहब वाले के रागी जत्थे पासों अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करिए। सो संगतां दे चरणां विच बेनती है, मेन हाल दे विच आनंद कार्ज आरंभ होण लगे हन। जिहड़ियां बाहरों संगतां मत्था टेकण वास्ते आ रहीआं उहनां नूं बेनती है उत्ते तुसीं गैलरी विच मत्था टेकणा है, उत्थे वी गुरु साहिब दा प्रकाश कीता है जी। आओ बड़े प्यार नाल हुण कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

हरियातम राम पसारिया स्वामी सर्वरया पर पूरे अंतर बार हर पर एको हर जन मंगल गाय जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाय जन नानक दूजी लाव चलाई अनहद

लाव बन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाय हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभाया अंदिन हाली मिलाय मन चिंदिया बल पाया स्वामी हर नाम वजी वादाय हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदे नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अमनासी जन नानक बोले चौथी लावे

इतने हाजरी दर प्रवान होइया भुलां देखी मां सतगुर कृपा करन सभना दियां हाजरियां दर प्रवान करन धर्म करो गुरसिखी जीवन की दात गुरु चरणा नाल प्रेम अते बरतीत बख्शिश करन सुआओ अगले समय लई सत्कार जत्था भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी श्री फतेहगढ़ साहब वाले आप सब संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे एकाग्रता बख्शिश करनी दासरियां दी फतेह प्रवान करने जी बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। जग